0: बखा मिरिक कदो दाय बनो कखनारना बेलाय गुतु सियान करंगरक बखानो कखनारुवै तनो तामनि हिनबा कखनानाय बखा खाकचंग मारुओ तैनि आनो हाकुंगो तनिखे काफ्रामा हाय बखाबो काफ्रावै दङो आबुनि बागिनो बखानो गचां खेतनि नानि नांगो बखा बेलायनो बसाते बनो नुकिया बखा जे सथायो तंगथक मानो आरोनो थांगो कखनानाय बखा बरकनो खांचकमा खाकचंगमा दाय तंगथगरुओ बखानो तंगथगरुवै तनि माननाय बरक ब खा खाममानि याकनि यकमंग मानो मिरिक बखा गुबैनो रुतगै मानिया आबहाय बखाबाय रोंमुंब मानै मानिया बखा गोजां गोजां खेसे खाकचां माफायो गोजां गोजां बखाबाय न बरक यकमुंनि लामा मानै मानो खोनाबायखा हायुंनि खरांगो ककाहाम तिनिनि ककाहाम नाहाजाखा त्रिपिटकनि दाबो खोनालायनो तिनिनि सालो लाइबोमाव तामुंखा
1: तिनिनि हाय सालनो 1893 स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस दतई ब शिकागो कगनारंगमणि ओशालनो रगिनो दिग्विजय दिवसिनि पाला जगै दं ओशालो बिनि नांकुमणि कगनारंगमा ओब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका हने ब कगनारगै पुला बिनि कगनो चेंखा ओ कगनारंगमणि बिसिंतै ब हायुंगनांगै हमजाक मुं मानखा तै तिनिनि हाय सालनो महात्मा गांधी सत्याग्रह

kabang taku de bukusung tau khana badi elem kreng panda wo tini khana layan pia modo bhakeri amontoi nei chai khana won dulal de bram kolumka elem kreng panda khnai tongnai kabang taku de bukusung no lamsago angnar ni taku kishur tini ni elem kreng panda wo ang phaisok baikya agotolani simi 35 किलोमीटर हाचा आमतली कामी वो खरक्चा पियानी ट्रेनिंग रनाई टाई पिया रनाई बी कल्टिवेशन खलाई नाई बरम को नांग सार दुलाल देव ब्रह्मानी नको फाइसा हुई क्या सानो पुलिया नो लामसो को तीनी नी एलम करंग पांदा वो

0: खुलुमगा सर
1: सर नो पुल सै पिया तो सों चार्ज खाने हाइकबा बी कल्टिवेशन खाने मदद बगे पिया मदलैसी बगे बसुक सामू नाको
2: ओ जे मद हंजाई आबका खमने बुबानी बुतई अनेक जरा जराव जो सैमान बुफांग बुतई बै नि खुम बोख्राइ हायबा पराग आबरब दाइपन विशेषके जे चामू विसिंगी जे मदु बा तैक दै आब बेरलैके बिथि गनां तामनि हमाले आ जे बिथि नाहा थग्या आ बिथि खुमरग दौ पियानो रेखायतु फायनै बुथुब खालायखेंके आरो दाल बिदाल भिटामिन्स मिनारेल्स जत किसु मानथगो हेंके निना आरो प्रोटीन अनेक किसु बहुत मानो हेंके नायदि जों अनेक समय थैकेबो थांकेबो जों मदु नाङो मदु खा गोथार होननि जों खाव चङो ते मताय रंनि कासा चामु होनैबो जों अनसुगु एक्सुवेलि ककखे मदु होंखे कासे यं सिमि से आब सोनामि मानो आबके टेकेबिया आव पिया
3: पिया दो करि टेकेबो मदु सोनामि
2: न तां माले पिया न ब आ खुमनि बुबानि बुतै न ब बहगो सुबुइनै तुबुइनै बिन खक्ति बायखे गदालरिने ब नगो कपा फाकिं केसे
3: माफच मदु
2: आफोस मदु
3: गे आफ्रो अब हाके मदु छिरि साथनि बागे गबां मा बेमार हामरि थानि बा साक हाम तंगनान बागे त मदु छिनि सालग्रुम न नांगो बा जतन चाना नांगो
2: बा
3: मदु छिनि कहा ताबु तो मदु माना निंगा के तो बलंग बगो छिनि जारा आगि बलंग पिया बथर मुखे सक चाय र बनि नक सक चाय ने मदु राय तु मारो पिया ताबु तो आवश्यक बलंग परीक्षा पिया मदु एकदम कक्रखे माना निंगा के नगो भाइके छिनि चास खलाय
2: सङ पुला के सङ सायमान नांगो मदु एक्चुअली चिनी सालबुरम सामु नाउ मदु कासे बिथिसि निनि इम्यून पावर न बारु निनि एनर्जी न बारु ते कासे ककके जाय मदु डेली चामिस कनैखे फुङ नंनाय बिनि सागो रुखसुक फायमिया आर ते कासे ककके निनि साखनि मेलेनिन न कन्ट्रोल खालायनायखे मदु हायनि बागै कस्मेटिक्स रग मदु युज खै मदु रुजाव ते कासे ककके निनि सरिन तुमक नों बेलाय न कुफुं नोंसा राम नामो सङो हाइके फुङा चिरि चिरि दैखौ दं बायखे मदुनो खाखे तरुक तरुखे नि सरि बुफाम खामै बायथांनाय किसा साखेलेंनाय बन लग लग जारा सा केराम बर किसा फुङनामो सङो हाइके बद्दुद बायखे फुङो सारिग चामिस कनिखे बद्दुद नोंरि नोंखांखे बिनि साग फायनाय कुनु नां नंगिया बिथि चायनै फुमा सै हाइके फायगेला हाइफोन नायथक के बिनि मोजां तैखे बिनि मदुनि जे गुणनि जे सामु नांमानि आमसेखे लमेलि मेलिनि फायनाय
3: बाहेखे रनाय आव ककखे आवसि
2: नायदि
3: कुइला ट्रेनिं रगदा नाना नां
2: ट्रेनिं तो मास्ट हाइफोन ट्रेनिं गोरैफोन स्पेसियेलि जारामते हाइखे रिनाय रग बायखे किसा गोदालै किसा सिउइ मांखे जाखुगो तामन बागिखे ते खायसेखौ मैथनारांना नांनाय मैथनारांनाय आखक न नों बलङ थाङै पिया यं सक्सै रिखा बिनि नक नक सक्सा माहायनो हेंखै तामन बागि हिमालय नायदि बिनि चामं नसो नों सेगिजाव ताबनि चामं गया ब बिनि बसाबोनि बाय खाति जामासै नोङाबो वायसाबाय माना बागै नों पुरा बन सक्साय हकु दुमरै खारै रावै नोंनाव तैफैयो हाइफन तामं हिमालय नों आहाबो हाइखे तैफैफन बाक्साखे सोखानियाखौ पिया बथ बिसिङ जुदि सोखान जाखे ब सिल खालायखिबौ ब मथबैखिबायो एंखे तुमुंनो जुदि आ जे सिल खालायजायगिया गोलां गोलांखे आबो पाटलाखौ आ पाटला जे ब फाइनो बखौ बायखे सराय जे गोबाय फैमानि आबो तिसानानै बायखे बिनि गुला ब बनो त्रिक त्रिखे बिना बोख्रां चिकन चिकन बायखे सिप सिप सिपते सिपते ब नबार खारै उलखे सेका नों फुरखे ब खलबै रिरु
3: ओ माने प्रसेस गांके बिनि आ जे पिया जे कफाय र फैमानि मदु तुबै नै आबो न ब सेका ननान बागिने बिनि बकरां
2: नै बिन बकरां बखे ब नबार सिबु आबगिन पिया बाक्स जारा टंगनाय र बर खुनजु खाइ नाखिन के हे बुंखे रांगला फमा हाइखे खनावन

जेफोरो रूम काय थांगो आफ्रो कायसेनो ककथाय मुर्तिमनि फैयो अबंका शतरंजन दे ब्रह्मा बायरे सबजा रसामु नि और रसामुनो मुइतो मानसाय फायो।

अजरावो बेलाय नायथथक जागा बेलाय लोकु कथुमा जागा बांग्लादेश ओ कसबा काली मन्दिरनि सिमिन नहु जागै दंगो आबतैखे बांग्लादेशनि रेल लाइमानि बांग्लादेशनि बिनि रेल स्टेशन कसबा स्टेशन गानावनो नहु जागै दंगो बेलाय नायथथक थाय कसबा कालीबारि मन्दिर बेरायना थाङै तमं तंथार न रतगुने आमानो मानखांखे बसिक्स खाक्सां फायदे तिनिनि आम मैसन जरावो सोंबो खुरमलाय नोंनाव सोनाना नोंना पालायनाय नोंथ' तुलनाया आमा संग्रामा नोंनाव खुलुम जाव

तानै नै मुक्ति सेनामी मानो नाइटो दक्खालाई मानो अब किसानी कज्ञा बुजरा रुने बा अंखनाब ताबुक बारो जे अशानी मताई सेनाम जा अशा मताईनी मखान बिनी कानमानी चामथी बार रिशा नि बुमोन जतन जरा कैसे तब तिर तिर के अब मीठी थका कसाम मांगपिली रोगे सराय सराय शाम थी बारिगनाय तई रिशा ने बोम मसानी टंगी नाइथक थाय नाइथक जगह गाबन दाखु दैबखौ जों ताबुंनि बेसेबो नारंनि बागै गायसा सोमो अ थाइरंनि बिसिं बबाग्रा तांलांमानि दै गोसारो नग बा राजप्रसाद आथायनि मुं ताम बबाग्रा रग तांलांमानि थाइनि मुं ताब वानसुकदि दे कल खालायदि दे अर सामु खोनादे खोनादे वानसुकदि आथाय अथाय नि मुं

0: हेलो नरखनाइतुमो 101.6 मेगाहर्ट्ज ओ एफएम उज्जैन तुनी बेराइखरी पांदा हेलो
1: हेलो सार
0: लामसागो खुलुमका
1: आमोनार खुलुमो सार आं बायनोनि सार दो
0: ए
1: हेमनार सार
0: ए सारी बो थायनि नि जत्न छैनत
1: अ कोन आं थां थेंगे दो सार ओ खुमुंगै बारमानि
0: सारी ताखु কাদঙ্গে থাকা কক করে দেওয়া করেন দে 2326253 কক নাম্বার মোবাইল ইউজার 03 81 কুট নাম্বার নানি

0: हेलो हेलो
1: काम चाहिँ गर
0: देवर कहाँ
1: आंखा पनि ओपनिंग दो
0: ए निनि नाइथुक जमै थाइबो बछरी हेलो

0: हेलो हेलो लामसगो सारिताखो नों सादि बो थाइनि बागै जत्न छै नाय थखौ गाउसे सादि ताखु तिन्त रिक्वेस्ट नि पान्दाया रिक्वेस्ट नि पान्दा हांखा जांनोनो रिक्वेस्ट नि पान्दा खोनानानै आंखै हेलो हेलो
1: सार दिब कहाँ
0: दिबर कहाँ हम सामंखा
1: कुलमांग यांग पिछले सत्र पारन कॉलेज बर मसे
0: ए सादी बुखो
1: आन जे ना छुगो मांग के को

खनातक खरंग पांडव बेलेक खनातक रसामुं खनाका कंथती जमातिया बेरे साबलग रसामुं ताबुन बे सेबो ते तंगसा खनातक बेलाय रसामुं नंगले आनि बागै सिमिनो रसामुं सुरभि देव ब्रह्मा पारमितारिया शकांते नवनील चाकमा।

औ नाइसिगै आखाया आनि मकल बाय खोनाथ' खरां पान्दाव बिश्वनाथ देवब्रह्मा बाय रोसाबजाग्रा सामु बेलायन' बेलाय बेलायखेन' खा तंथबाया बनि रोसामु बिनि खरां कतैबाय खानु खिलिमा बोसोसै खा सोरां सायफाय पादेखे तामुनि बेचाब तेरटां सार सामु नरं बागैनाय मानिक बिपासाताय अनिल देवब्रह्मा बाय रोसाबजाग्रा सामु

पेपिलोमा भाइरास एबा एचपीबी टीका चार्ची रासायनिक गोबां रोजाखा हानै साखान्थाय नुखुं हामख्राय कंसंलाइनाव साखा आगरतला एनएसआरसीसीनि हास्ते थों परासर बाय जगाले जाग थैरमा पान्दा मान्जाखा मन्त्रिया खपाबेचक दातक मानिक शाह पुरनायख्रायनि मेयर दीपक मजुमदार पद्मश्री जिमनास्ट दीपा कर्मकार आगस शिविर खरगसारा बायथां मसंगै थैरेखा एडिसिनि भिलेज कमिटि चम्बरेनि चम्बलाय रसाय नाहानानि तिनि बायथाक साल आसिक ज्योति सैमाखा तक्सिक जननि न्यूज हेडलाइन्स खामांता खुतै बुखुसम खनातो खरां पानाव बायथाकनि रसामुं दारं बागै मनोदेवी जमातिया बायर रसाब जाग रसामुं आव रसामुं बाय बाक्सानो तिनिनि खनातो खरां पानानि माबा सासिनै काम दंदि बुनियो काम तंगनारदि आसिक जरनरक आनि लगै तमाम बागै पाइपलाइन हामबाय जतनन खुलमका

मिलता संदेश। लखनऊ जाने वाली ट्रेन तो सर जा रहे हैं, देखो क्या इश्क चढ़ा।

0: अनियागुलो ओ वानसोक मुंगनो तुये अगरतला नि सुप्तिम दे अगरतला वो चेंग परिवर्तन नेचुरल्स अपग्रे टू प्योर एंड हेल्दी फालनक आउलिबो बरो कबांग मा तोंगमा आम चायनो घानी वो हयरो बुसलि फेरै काहाम थक नामनानि चेंगो ब बतलो सुपुंगै अ थक ताबोक सा खामनो तुये हजा तोंगनाय रक्नि थानि सगियो हाक्साल आम चायनि लुकुरक ब फायै अ थक ना फायो थक्स नामनायनि बागै अमनो अंखा पुइला काहाम मानमारि
1: जबकि कोल्ड प्रेस जब आप निकालते हो तो कोल्ड प्रेस आपका फर्स्ट टाइम हीट आपके घर पे जाके ही मिल होता है, तो उससे क्या होता है आपका ट्रांसफेट का चांसेस बहुत कम रहता है। ये आपके हेल्थ के लिए भी उतना हानिकारक नहीं है ना, आपका वो प्री हीटेड ऑयल जो निकालते हैं वो जितना हानिकारक है, तो इसलिए वो कोल्ड प्रेस ऑयल्स या वुड प्रेस ऑयल्स जो भी है वो आपको हेल्थ के रिलेटेड बहुत लिबरलिटी देता है।
0: ओ थक्स नामा वो शिमी बाथाग जागिया फाता नि तुबुई फाइमा होइरो बुसलै ताई पैकेट फाइमा मानै तुबुमा कताल मेशिन आचुक रुमानि लगे लगे ताबो थककारी पाइमानि यागुलो होइरो नि खैल्न बानियानि बागै हाति व रहनानि वानसक तांगो तंगो बाय थांनो तां सामुंग गदाल रुमानि लगे लगे ताबो बुइनि बागै तां सामुंगनि शेप्स नामनानो हा बिनि नाहार मुंग बुबाक आबो बानिया क्लाइमा शिमिया आबोनि नाहार मुंग हा साक काहाम तंगना बाय थां चुकजाक ताई थिनांनि हामक्रायनि लाम्ब सुमन भट्टाचार्यनि कक्थ
2: बैंक हाटीओ सालबा हाबा चल खलायनानो खबै किसासेक सानमुंग सानै हाकतर गनांगै दिनि हास्टिब राष्ट्रीय बैंक रग धर्मगत पालाय जाखा बैंकनि सेवक अफिसारक काइसनि इउनियननि जुत मन्स इउनाइटेड फोराम अफ बैंक इउनियनो धर्मगत देखा फोरामनि हास्टे कन्भेनार सञ्जय दत्त साखा सेवक रगनि सामुंनि पजा हलिरेनाथाय बायथांनि लामाव थिथि तनिना नाहारि हाथियाव सालबा बेंकिं सेबचल खालायनानै नायथाय हास्टेनि चिदक मेट्रिक टन काहाम बेरेमनि चा इउरोप रहर जाखा तिरब्राचा हामक्राय नायखंनि चेयारमेन समीरंजन गु साखा अचा दुर्गार बारि नखबै मोहन पर्व खाक्सतेनि जुदा जुदा चा बागनि थुम जाखा तिनि चा रहरमा चेंगै रोमा पान्दा मानजाखा स्नाम खरतै बानिया नायखंनि तांग्रा किरण गिद्दे त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय नायकलजाक जेसी मुखमली क्रिकेट बादायलै मुंनि उननै राउन्डनि थोंलाइमाव तिनि खोप्लाय अंखा जयनगर क्रिकेट क्लाब एमबीबी स्टेडियामाव सालथामनि थोंलाइमाव जयनगर क्रिकेट क्लाब विकेट काइसनि बाय संहति क्लाबनाव मेजेनखा यांग नरसिंगरनि टीआईटी थोंखलाव संसाजाक ब्लाड माउथ क्लाब तै स्पुलिंग क्लाबनि थोंलाइमुं ड्र अंखा सिपाहीजला हांकरनि काथालिया हदा साखाम केन्द्रनि उत्तर महेश पुर कामि पंचायत आमसायाव डेंगू बेमार कासुमाव साखाम नायखंनि बोखाक्तै नांमानि सेब याजाक जाखा साख नायनाय तै साखामनि सेबक रग नगर नगर थाङै नग गानागिनि आमसायाव एडिस थाम्बुइ एरमानि तंखर दे तं आबनो चेरि नायि दङ बरक नगन खबै बारा बायचिं साफसुथ्रा तरिनानि तैबो हजाक खालायखा लुकुरक न उत्तर महेशपुर कामि आमचायो थांनाय आगस्ट टालनि सिमि ताबुकसुक जरा खरक थामसिनि सागो डेंगु बेमार मानजाकमा नुकजाखा ताबुक नबार दिबानि कक बोसकां दामनै चिब्रियो सालचि दलाय उनगुति हांखर फेरांक गै गोबां वाते वायमानहनि हजाक खालायखा नबार दैबार नायखंखना तंमारि तंगानो साखाव थामसिबा डिग्री तै खामाव नैजि दक डिग्री सेल्सियास सेल्सियासनि गानागिनि दिनै टंमारि टंमानि साखाव 34 डिग्री ताय खामाव 24 डिग्री सेल्सियास कक्तमा पाइनानि सिगां कक्तमा बुबाग रक्तै बैसा साफिर' फिल चिचार ब्रिक्स कुचुक बेरेमनि कुथुम लाइमुंखनानि सिमि दिल्ली कतालनि भारत मण्डब चेंगाना फिल चिचार ब्रिक्स कुचुक बेरेमनि कुथुम लाइमुंनि सिगां रासियानि प्रेसिडेन्ट ब्लादिमिर पुटिन बाय बाबायनिनि कक्लाम सालायका मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी फेकमुं गार्जाक ताय गदाल दिब्रास नामति साना नाहारि सिख्ला हदान तायब गोबांखाय हदा हामक्राय रोगजाक सामुं बाय गदाल रेनानि कबक मुंना रोखा मन्त्रियक्रा प्रफेसर डाक्टार मानिक साहा जेसि मुखमौलि क्रिकेट बातायलायमुंनि थोंलाइमाव खोप्लाय अंखा जयनगर क्रिकेट क्लाब कक्तमा तिनिनि बागै अरनबाख्या उननि कक्तमा आवाय अंगना खोना फुं दामसिनि सतिब्रैजिव'

0: শ্রোতা বন্ধু, এতক্ষণ শুনছিলেন শ্রীমান তিলোত্তমা পর্ব। বিদায় নিচ্ছি এই পর্ব থেকে, আমি আপনাদের বন্ধু আর জি অর্ণব। এবারে শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সমাচার সন্ধ্যা।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक

0: बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण।

0: सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। एक रिपोर्ट।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को ये बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज

के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।